छोटी उम्रे पिता नूं कुर्बानी दी प्रेरणा देण वाले चोजी प्रीतम दोवें लालां दीआं जोड़ियां अते बिरध माता गुजरी जी भाव की अपना सर्वस्व लुटा के माछीवाड़े दे जंगलां विच बेफिक्री दी नींद सुते हुए सन।

किधरे ओ नीला कोहड़ा ते किधरे बाज गया है, किला आनंदपुर वाला ते किधरे ताज गया है। लाला दियां जोड़ियां वार के दशमिश पिता जंगलां विच कंडियां परी राह उते टुरे जा रहे सन। पैरां विच बेशुमार कंडे चुभे हुए सन ते खून वग रहा सी, पर कंडे दी चुभन उसनू की दर्द पहुंचा सकेगी, जिस दे जिगर विच सारे जहान दा दर्द तीस बनके पहला ही चुभ रहा होवेगा।

चेतना आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई। है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन ओ पाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शाहम पात साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सोना वड्डा आखै सब कोई।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तासों बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

तह डूबी अले मान एक न जे तस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाउ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक दिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई परापत

कभ्यो वाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपार हमरे दोष

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन बजायो, आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार दस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो।

सतर्न को बल मद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के बट बट की जाने जय बोध करख करा

कछु भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो हे देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडज जे रज से तिज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा हव बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार या सिख संगरो। दोष जिते उठ बदो तो पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आस तोज तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं।

सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां शब्द उतांगा वो हरि के रामान जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

0: गुरु प्रसाद।
1: जय कारु कीरदासी जय करते गहु विचारु तत कर गाव सुहिला शिविर सजनहारु तन गाव मृर भोका सुहिला हरिये लै सदा सुखोय राउ नैत नैत जी अड़े संभालिया देखेगा देवनहारु तेरे दाने किमत ना पवै दसदा ते कवण सुमारु संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेल दिन सजन असी सड़िया जहो वै साहब सुमेल कर करो पहुंचा सरड़े नत पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे अवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बड़ाई तोय राउ विश्व चसें कड़ियां पहरां।

कर मन देता हूँ आज उन अटकों और जब जाए तो उन जगह अपनी पीठ करूँ हर सिख हूँ अपने ही मन को ए जालिम हो अपने साथ

18 मकर सन 1755 बाबा जी का प्रकाश होया। बचपन के अंदर ही चौंकड़ा ला के बह जाना, उस परमेश्वर की सिख तो सलाह करते रहना। किसी विद्वान ने ठीक आख्या, जेड़े होनहार होंगे ने होनहार पिरबान के होत चिकने पात, ज्यो चतरन की बात में बात, बात में बात। बाबा महाराम सिंह जी दल पहते वेच बाबा भूला सिंह दे वेले आए। बुढ़ा दल ए महान जथेबंदी है, इहदे पहले जथेदार होए ने बाबा विनोद सिंह जी। बाबा विनोद सिंह जी जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने घल्लिया ना, ते पंच सिंह पंच प्यारे ए हुक्म कीता सी वी पंच प्यारे जो हुक्म देणगे ओह होणा कल्ले नूं जथेदारी नहीं दित्ती। एक गल कोई भुलेखा ना खा जाए, जदों गुरु ने गल कहती भी पंचों में परमेश्वर जानो, ते मुड़ के कले बंदा सिंह बहादुर नूं नहीं तोरिया, ओ पंच प्यारे दे के तोरिया, उन्हां दी रहनुमाई थले तोरिया, ते उन्हां दे जथेदार सन बाबा विनोद सिंह जी। बुढ़े दल दे पहले जथेदार ओ होए। बाबा विनोद सिंह जी तो बाद बाबा दरबारा सिंह जी आए, जथेदार कपूर सिंह जी इसे दल पंथ दे अंदर। फिर प्यारे जसा सिंह आलूवालिया, वह भी बुढ़े दल का जथेदार रहा। जसा सिंह आलूवालिया तो बाद बाबा नैना सिंह जी, ते बाबा नैना सिंह साहेब उन्हां तो बाद बाबा फूला सिंह जी, और निहंग सिंह बाबा फूला सिंह जिन्हें अटक वर्गा अटकाता सी दरिया, अटक भी रास्ता छट गया सी कि गुरु दिया लाडलियां फौजां ने लंघना, वह बाबे फूला सिंह की अरदास सी। जेड़ा सिर तली ते धर के लड़िया, ते बाबा फूला सिंह तो बाद फिर जथेदार बने श्रीमान बाबा हनुमान सिंह साहब। ये सातवें जथेदार सन बाबा हनुमान सिंह जी, और अकाल तख्त साहिब दे विच जथेदार ने। अकाल तख्त साहिब दे उत्ते पिछे दिया होया गुरु क्या ला लईआं फौजां दा दरबार, उत्थे ढाडी सिंह गाउंदे ने छिलियां 12 कहिंदा पिछे तख्त अकाल ते ओ पीर करारे, ओए हकीम शास्त्र जिन्हां ते सिर ते दस्तारे, ओ पिछे ने इहनां नूं इकाया इक सिख। कहिंदा जथेदार जी फटा बुलाईए, मैनूं पिछे भेजिआ महाराणी जिंद कौर ने। जथेदार जी लाहौर के हालात बड़े खराब हो गए ने, लाहौर के उत्ते डोगरिया ने अत चुकी हुई है, उत्ते भाइयों के कोल भाई मरवाए जा रहे ने, उत्ते एक दूजे का खून मना मुही बकाया जा रहा। जथेदार जी आ चिट्ठी है, ए हुणे पढ़ लो, ते आप जी नूं महाराणी जिंद कौर ने एक बेनती कीती है। ओ चिट्ठी उत्ते जो महाराणी जिंद कौर ने लिखिया उन्हां लईआं नूं तरसेम सिंह मोरावाली दा जथा है।

भक्ति के डंक मार दे से बोलिए है हम तो रहम कर दे भक्ति के मार दे है डंक बोलिए है हम तो रहम कर दे डरी मार रे थाल से भी फोड़ दो हो गए के डर दे।

0: गुरु सतनाम वाह। सात चंद्र मैं आपके पुत्र चरणा च बेनती करना चाहता कि ये कथा जी हो रही है ये गुरु नानक साहब की कृपा नाल हो रही है। मैं इसमें नहीं कर रहा, मेरे कोई अजीब जी ताकत करवा रही है। मैं चूंकि गुरु नानक साहब का प्यारा हाँ, मैंने बहुत गुरु नानक नाल प्रेम है, इसलिए वो आप ही कराते हैं। ख्याल रखना असं गुरु नाल नहीं जे जुड़ रहे, गुरु नाल तां जुड़ांगे जे गुरु की आज्ञा विच वाहिगुरु नाम सिमरन करांगे। बाकी तो सब कुछ कर रहे हैं, पाठ भी हो रहे, कीर्तन भी हो रहे, लंगर भी लग रहे, दिन रात असं सेवा विच हाँ, किसी गल की कमी नहीं। कमी इको गल की जे कि असं गुरु नाल नहीं जुड़ रहे। गुरु नाल जड़ा बंदा जुड़ जाता वो वाहिगुरु नाम जपदा इंसानी, और जरा वाहिगुरु नाम जपदा वो मुक्त हो जाता, वो मिठा हो जाता, वो चंगा हो जाता। ताकि आप मेरी बेनती स्वीकार करना ते वाहिगुरु जी का नाम जपना।
1: थैंक यू फॉर लिसनिंग टू CISK सिख रेडियो 94.3 FM ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न सिंह सभा गुरुद्वारा इन विलियम्स लेक ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singsabha2@gmail.com singsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਬਸ ਪਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਾਨੋ ਮਮਾ।

जो जो दिशा वड़ा वड़ेरा सो सो काकुरा से निरपाओ निरंकार पाव खंडनु

मांस जपड़ा क्या साला है, क्या किसका मोहताज, ग्रहाओ जिन हर खाया सब किस किसका, किसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुखदाता, निखुटना तब ही जाए, आनंद भया सुख सहज सुमाने, सतगुर मेल मिलाई, मन नाम जाप नाम आराध, अंजन नाम वखाणी, उपदेश सुन साध संतन का, सब तुकी कान जमाणी,

0: podría dar con salud.
1: So Guru Rupa Sahasrambhadi Yo Ekagrata Pradhan Karne Ajuda Sorath Raag De Andar Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj Da Jo Mahan Vaak Aaya Hai Is Vich Aise Vishe Nu Satguruan Ne Choya Hai जो करीबन करीबन व्यापक है कि जगत भी समस्या है मनुख का कुछ लोड़ा का जगत है मनुख का कुछ लोभ का जगत ये जीवन दे ढंग दो ही ने ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਤੀਜਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ताही सत्य से तीरा पे सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन से पीसन।

सुन जीवा तेरी वाणी रहाओ। चरण तूर तेरे जन की हो, तेरे दर्शन को बल जाई। अमृत बचन जगह और धारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पे सारी, जेवड़ अवर न कोई। जिसनों लाए लह सो लावे, भगत तुहारा सोई।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे मेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन, आठ

सुख दुख दासा मन वस है, तित तन कैसी पुख जियो, बाकी वाला तल भी है, सिर मारे जिंदा जियो। लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो, सच्चे की लिव उबरे बक्से बक्षणहार जियो। अंतो की जय मित्रा खाक रले मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो। नगर प्रभु ते छुटी है नगरी मेल मिलाए जियो, गाफल ज्ञान विहूणिया गुरु बिन ज्ञान ना पाल जियो। किंचो तान विगुची है बुरा पला दो नाल जियो, बिन सब दे पैर रत्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया सबसे दे आधार जियो, सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो। नानक नाम न विसरे निधारा आधार जियो, सूही महला पहला काफी कर दसवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सुवार वखर सच ले, पत पाए दरबार सतगुर सौद पै रहाओ। मन तन सच खलाए साचे मन भाया, लाल लता मन मानिया गुर पूरा पाया। हौ जीवा गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे। मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना। मनमुख परम पुलाना ना तिस रंग है, मरसी हो विडाना मन तन पंग है। गुर की कार कमाए लाहा कर आनिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास जे तुद पावसी, मैं दीजे नाम निवास हर गुण गावसी। सूही महला पहला ज्यो आरन लोहा पाए पन कराई है, त्यों साकत जोनी पाए पवै पवाई है। बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हो मैं आवे जाए परम पुलावना रहाओ। तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आई है, मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है, तू देखे थाप उथाप दर दीनाई है। देही होग खास पौन उड़ाई है, इहो किथे कर औकात महल न पाई है। देहो दीवी अंधकोर कब मोहाई है, गर्भ मुसे कर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जोत दिपाई है। लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाई है, सदा रहे निकाम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मिलाए जे सुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम विसार एन स्याई है, जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है। मैं अंदुले हर नाम लगती टोहनी, रहो साहिब की तेक नाम हो है मोहनी रहाओ। जह देखो तह नाल गुर दिखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवें रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आए कै, जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै। हो ना ही तू होवे तुद ही साजिया,
आपे खाप खाप शब्द निवाजिया देही पसंद रुलाए न जाती कह गया आपे रहा समाए सो विस्माद कया तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेख हदूर अंतर भी तू है मैं दीजय नाम निवास अंतर शांत होए गुण गावे नानक दास सतगुरु मत दे राग सुनी महला तीजा कर पहला अष्टपदियां इक ओंकार सतगुरु प्रसाद नामे ही ते सब कुछ हुआ बिन सतगुरु नाम ना जाते गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध न जाते कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपे गुरमुख हो वैसा एको जाने हों में दुख ना संतापे बलिहारी गुर अपने विटों जिन साचे स्यों लिव लाई शब्द चीन आत्म प्रगास्या सहजे रे आसमाई।

मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे होमे विचों जाए, आपे दाता कर्म है साचा, साचा सब सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, दिख बीजे दिख खाए, जम काल बादा कृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत्सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठसठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाते मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिर्फ सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर तिसकेरा, दुर्मत कह न जाए, हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अग्न बुझाए, गुर कै शब्द राता, सहजे माता, सहजे रहा समाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै पाए प्यारे, सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे। एको सच्चा सब में वरते, विरला को विचारे, आपे मेले ता बख्शे, सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वरते, गुरमुख कोई जाने, जमन मरना हुक्मो वरते, गुरमुख आप पछाने। नाम से आए ता सब गुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए, नानक तिस दा सब किछ होवे, जे विच्चों आप गवाए। सोही महला तीजा, काया कामन अब सुवाल्यो, फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे तेसरा सुहागन, गुर का शब्द समाले। हर की भगत सदा रंग राता, हो मैं विच्चों जाले। वाहो वाहो पूरे गुर की बाणी, पूरे गुरते उपजी साथ समाणी। रहाओ काया अंदर सब किछ वसे, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता, वसे सबना करे प्रतपाला। काया कामन सदा सुहेली, गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए। मनमुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ, भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी, हाथ पतन बाजारा। इस काया अंदर नाम नौनिध पाई है, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे, आपे तोलन हारा, एह मन रतन जवाहर मानक, किसका मोल असारा। मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, नाही नाम पाई है गुर विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा। सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौन पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। साथ आया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर कोई नाही, ता जम करे कुआरी। नाम के सच वड्याई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा, कर दसवां इक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मर वंशी, लोका ना साला है जो मर खाक थी। वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे प्रवाह रहाओ।

मनमुख दज मरन जमपुर बदे मारी है वेला ना लहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप दुबे कुटंब स्यों थगले कुल डोबन निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन मोह काले ते निंदका नरके कोर पवन ए मन जैसा सेवै तैसा होवै तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किछु न जाए महापुरखा का बोलना होवै किते परखाए ओए अमृत परे परपूर है ओना तिल ना कमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवड़ पागी जे

आरती जा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवन गुणा कटिए जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोहत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रब एक से आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मध अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया कर नावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहती है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ त्यों रंग जियो। तिन त्यों प्रीत ना सुतई, कबहू न हो वह पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूर कमावे तंग जियो, नाम प्यावे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो, जिसनों करता विसरै, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगह पैदा जाय जियो, ऐथे सुख मुख उजला, इको नाम ते आए जियो, आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेव्या सत पाए जियो। खाम संतर रव रहा, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचया, एक नाम धन माल जियो, मन से कबो न विसरै, जा आपे होए दयाल जियो। आवन जाना रह गए, मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाइए, ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जमे लखवार जियो। साथ में हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो, रंग रत्ते परमेश्वर है, दिन से सकल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्वमय, तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कर दसवां का।

दिया जिनाने हो दू जाने लगा चूर मरो से वाडिया हो ना छोड़ो कंक पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा इहो महिंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर तास से तू निवाणी मानिया जे तू तुथा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मू दातड़ी नित हृदय रखा समाल आप जुलाई पंध तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां

तोहो कह न सका गुण तेरिया। सैया कौ असंख मंजो हब बदानिया, एक पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जै डिठे मन तीरी है किल विक वंजन दूरे, सो क्यों विचरै माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी तह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संसाए। सुही महला पंजवां सिमरत बेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड गाली होचियां। नाम विधान अपार पगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर रुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरत अवतार माया संदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाज जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला कुछ जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मंज कुछ जी अमावन दोसड़े, हों क्यों सो रावण जाओ जियो। एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो। जिन्नी सकी सौ रावया छे अंबी छावड़ी है जियो। से गुण मंज न आवनी हों कह ही दोस्त रे ओ जियो। क्या हूं तेरे विसरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो। इकत तोल नाम बड़ा हों सद कुर्बान है तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो। से वस्तु सह दितिया मैं तिन क्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो। हों इनी तोली पुलियत किस कंतना बैठी पास जियो। अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आई जियो। सातन चली साहुर है क्या मुंह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल सिया पुली वाचड़ी आस जियो। तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी। जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो। तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो। पाने तख्त बढ़ाइया पाने पीत उदास जियो। पाने थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो। पाने पवजल लंगी है पाने मंज परियास जियो। पाने सो सोह रंगला सिफ्त रता गुणतास जियो। पाने सोह पिहावला हों आवन जान मोई आस जियो। तू सहो अगम अतोलवा हों कह कह तै पई आस जियो। क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुरशब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो। सुही महला पंजवा गुणवंती। जो दी सह गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा
मेरा मन अंत न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दियो बताए जियो। हों आया दूरों चल के मैं सकी तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े गुर कह सुकार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो, हाँ आपको बोल न जानदा मैं कया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्या गुरु नानक किया पसाओ जियो, मैं बहुड़ ना कृष्णा पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिकड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो, जो

pelo lesson. ये फिर कर जीवन दोबारा मवचु ते नाम ना जुड़े हैं मनुख दा कोई काज अधूरा नहीं है। हाँ एक गल ख्याल रखनी कि जेडे काज ने ना उन्हां प्रति भी सोच ली क्योंकि वो गुना नाल संबंध नहीं। इसलिए आख्या से नहीं मैं तेनू कर्मा प्रति चेतन करना चाहना अब तक कर्म कमावने दोष न कहूं जो क्योंकि काज तो कर्म बनता है। मनुख ने जेड़ा काज अपने सामने रखे होंगे उनके लिए कर्म करता है। जिन्हें धन कमाने का काज सामने रख लिया उन्हें वो जो कर्म करने में बिजनेस करा कोई व्यापार करा तो जिन्हें धर्म कमाने को अपने जीवन का काज बना लिया होगा उन्हें वो जो कर्म करने ने इसलिए कहने लगे काज तू निश्चित करने लगे हो सोच नहीं। पर मैं तेन यह विश्वास दिवाना जेडे लोग नाम के सहारे काज करते ने भावे उन्हों का संसारिक काज होवे भावे परमार्थक होवे पूरा होंगे पर नाम के सहारे होवे इसलिए आख्या क्या ने कि देख जदों नाम के सहारे धुप भी आएगी शीतलता के सामने धुप भी आएगी तो फिर वह साड़ नहीं सकेगी निग बन जाएगी। नाम ना जुड़ के पदार्थ भी आएंगे फिर पदार्थों की जहर तेन सता नहीं सकेगी वह भी केवल निग बन जाएगी। इसलिए जिन जिन नाम दे आया पहला विश्वास पहला सबक तिन के कार्य है ताकि मनुख जीवन विच प्रभु के गुणा नालों नाम नालों ना टुट सके। अगली लाइन विच कहने लगे एक होर भी ख्याल करी हर गुर पूरा आराध्या निरंकार के दो स्वरूप सरगुण आप निर्गुण आप सरगुण भी हो सरगुण निर्गुण निरंकार रब है निर्गुण गुरु है सरगुण सामने दिशा रब बधाई दूजा पवन गुरु है ना इस तरह आखिरकार काचे से पवना बनाया। हुण कहण लगे मैं तैनूं जिथे नाम का फंक्शन दस्या ना भी वो हर कार्य लिए एक शक्ति बनता है उत्थे तैनूं गुरु का फंक्शन भी दस दें ताकि तैनूं एक ख्याल होवे मैं गुरु नाल संबंध जोड़ के रखना। कहण लगे गुरु का फंक्शन तेरे जीवन

आगे करे पुकार ते जवाब सी कहन लगे सतगुरु पिछे भज पवे गुरु को आ जाए। यह करनी चाह उन्होंने सब तो चंगा काम यह हो दर दर भटकन की बजाय वो गुरु को आ जाए यह करनी सार ते कहन लगे फिर गुरु की करेगा सतगुर खोटे हो खरे करे करने इसलिए क्यों ने हर गुर पूरा आरा दिया दरगह सच खरे नाम ने सारे कार्यम च शक्ति दे दी ते गुरु ने खोटे तो खरा करके रब्बी दरगाह सच्चे की दरगाह अंदर प्रवान करा दिया। सतगुर खोटे हो खरे करे शब्द सधारन हार तो शब्द नाल बाणी नाल धो के ताल के खोटे नू खरा कर दिया ते जदों हुण वो खोटे जिहड़े खरे बन चुके ने दरगाह विच जांदे ने हुण उहनां नू रब दा खजाने विच शामिल ते गुरु ने यह गल बाणी बारहवें वचन अखीर के शब्द कहने।

सर्व सुखा निज चरण हार। एक होर ख्याल रखी, निरा सुखा विच जेड़ा लुभायमान हो जाता, जेड़ा निरा सुखा विच प्रवृत्त हो जाता है, वह डूब जाता है। पर जेड़ा मनुख सुख जेड़ा है वह प्रभु चरण विचों ढूंढता है, थां थां ते सुख ढूंढन नहीं जाता, उन्हों एक होर वड्याई मिलती है, उनके कोल सुख भी आ जाते हैं, ते वो ये बिखम संसार पवजल नू भी तर जाते हैं, डुबदा भी नहीं। मैं एक बार एग्जाम्पल दी थी कि मिठास विच मक्खी मर जाती है,

क्योंकि तेरा नाम ही मेरे जीवन दे हर सुखां दा एक पैगाम है। आओ अज बारह माह की समाप्ति हुई ते गुरु ने इस बारह माह दे तत्व विच सब तो पहला ए गल आखी जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज करे। अज कोशिश करियो ताकि टिके रहो। आपां कीर्तन की समाप्ति तो बाद भावे एक मिनट लई एक बार नाम रूपी वाहिगुरु शब्द नाल जुड़ना है। सारिया ने मिल कोई रचना खाली ना रहे क्योंकि गुरु ने जिहड़ा तत्व दिता है ना वो इन्हां लफ्ज़ां विच ही दिता है। आओ आखिरी तुक पढ़िए।

0: और सतगुरु ने जीवन विच पाए हुए बहुत सारे पहादुए दे परमन अपनी बारह महा दी बाणी रचना द्वारा दूर की ताकि असी समझ सकिए साडे जीवन दे अंदर भी कोई वरा बारह महीने वर्त रहे ने, रुत्तां बदल रही ने। ए बारहवीं रुत्तां साडियां नहीं, सूरज दियां ने, साडे वस भी नहीं। अंदरों तां जदों मर्जी जेड़ा मर्जी महीना पैदा कर लो, जेड़ी मर्जी रुत्त कायम कर लो, जेड़ी पसंद आवे, जे सहज अवस्था विच आ जाओ हमेशा भी बसंत बनी रहे। गुरु ने बख्शिश करके साडे जीवन दे अंदर दे बारह माह साडी चो ही पाए ने, जेडे साडा जीवन बन जान। इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जाचिक हां, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। हम आप गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिछय बिकसाई। माया मोह परम पै फूले, सुतदा राशों

आप गुरमुख हर जपया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर।

मुद बलीती कपड़ होए दे साबून लिया तोए परिया मत बापा के संग हो नावे कह रंग बुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ला जा आपे बीज आपे ही खा नानक हुक्मी आव जा तीरथ दापु दया दत्त दान जेको पावे दिल का मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर गात तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मन आई कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वास्थ्य आस बाणी भरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ गवन सुवेला भगत।

ज्ञान खंड में ज्ञान पर चांड जिसे नाद विनोद गोड आनंद विश्रम खंड की बाणी रूप जिसे काट घड़ी बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहि जी को कहे पिछे पछताई जिसे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध जिसे घड़िए सुरस दान की शुद्ध कर्मखंड की बाणी जोर जिथे और न कोई होर जिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहे आपारपूर तिथे सीतो सीता महमा माही दागे रूप न कथने जाही ना हो मरण ठग जाही जिनके राम बस मन माही तिथे भगत बस के लो करे आनंद सच्चा मन सोई सचखंड बसै निरंकारू कर कर वेख नजर निहाल तिथा खंड मंडल पर पांडव जी को कथा दंत न अंत तिथा लो लो आकार जिव जिव हुक्म दिव दिवकार वेखै विसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा तीर जसनहार हरण मतवीर हथियार पाओ खला गंधव दाऊ पांडा पाऊ अमृत दत टाल घड़िया शब्द सजी टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता दर्द महत दिवसराध दाई दाया खिल सगल जगत जंग आईया बुरे आईया वच धर्मा दू

अबहाय गाय मानन दाना ने कबरे कहे पजंग पर्याद शंभ नमो सर्वमान्य समाति न धान्य नमो देव देवे अपेक्षीय भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान दाने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादि नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी नामे समाधि स्वरूपे ब्रह्मंगी परमाधि समाधि भूते।

प्रपंगी परमाथे समाधि प्रभूते कलंकंग बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राजराजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राजराजेश्वरंग परम हृदय नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र पाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोग्य भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जोगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो तमिशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणाशी रूपे रूपे समातुल निवासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धकर्ता दुअर्धर गंगो हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोजपालं सदा सर्वदासद सदा सर्वदासद दाता दयालं शेदिय बेदिय नामं कामं समासु ब्राजी समासदास दामं तेरा जोर चाचरी संद जले हैं थले हैं पीता वे हैं प्रभु अजू हैं दे सब इस हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधि अबाधि आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समास दीन धान्य नमास त्वं नरनाथे नमास त्वं परमाथे नमास त्वं गंजे नमास त्वं पंजे नमास त्वं काले नमास त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाशाहे नमो महामाये नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजान्त्रं नमो सर्वदृष्टं नमो सर्वकरिष्टं नमो सर्वरंगे दर्भंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समातं प्रसिजे कृपालं रूपे गुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी जरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे जल भोगे जल राजे टल साजे खल धर्म लख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं बाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत तक प्रसाद आदिपनाद मुहूर्त यौन पुरख पारु सर्वंत्रन देवा बेवादुदारु सर्वाल सर्वकालगो सर्वोपन काल चतुर्द्रजीवदूतरु प्रसाल नाम ठावन जा जाकर रेख आदि बृखदार मुहूर्त यौनाद शेख दिशे जाकर रूपरंगनाख आद पुरफदार मूर्त जोनाद शेख देश और न पेश जाकर रूप देखना राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैले वन राग नाम काम हीन बेखद दाम हुन जाहि सर्व मान सर्व धर्मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन केन्द्र रूप अनेक खिल खिल खिल खिल अनंत को ब्रेक देव पेव न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जाता सु जानी कह देव दात्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन जकर बकर फिर चतर जाक मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखय जग जाप जय जाप आद देव नाद मूर्त थप सुव जय थप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो से हम पव कर्ण बंजन हार कालहीन कल संयुक्त काल प्रख दय हरेश धर्म दास परम रात भूतला कपेश अंग राग न रंग जाक जात पात नाम गर्भगंज भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीका नोस्त एक पुरख अवतूत गर्भगंज सर्व भंजन आदि रूप अस्तूत अंग ही न भंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदे अनुपेखो सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंग देखो परम वीर प्राण जा कह नेत पागत नेत कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार छंद तव प्रसाद गुरुगण उदार मेहमा पार सुन पंग उपमान अनुभव प्रकाश निर्दिन नाश राजन बह शान शाह राजन राज पानन मान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंग निरंक कालन काल अनुभूत अंग आपा पंग गत में पार गुणगन उदार मुणगन प्रणाम निरपैने काम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश कर्म दृश धर्म सर्व प्रणाढ़ दंड बढ़ चाचरी छंद तक प्रसाद
ഗോവിന്ദേ മകന്ദേ ധാരയ പാരേ ഹരിയം കരിയന്ദ്ര നാമേ കാമേ ഭുജംഗ പ്രയാത് ശാന്തോ ചതുർ ചക്ര കർത്ത ചതുർ ചക്ര ഹർത്ത ചതുർ ചക്ര ദാനേ ചതുർ ചക്ര ജാനേ ചതുർ ചക്ര ഭർത്തി ചതുർ ചക്ര ഭർത്തി ചതുർ ചക്ര പാലേ ചതുർ ചക്ര കാലേ ചതുർ ചക്ര പാസേ ചതുർ ചക്ര ഭാസേ ചതുർ ചക്ര മാനേ ചതുർ ചക്ര ദാനേ ചാചരീ ശാന്ത ना सत्रण मित्र न परम पित्र न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्र मित्र पर पवित्र प्रति सदी सदृश कृष भगवती शंभु प्रसाद का सते के आशज देश है के अभिज बेस है के अगंज कर्म है के अभंज परम है के अभिज लोक है के अदत सुख है के अवधूत वर्ण है के विभूत करण है के राजं प्रभाएं के धर्मं तुजाएं के अशोक वर्ण के सर्वा वर्ण के जगदं कृति है के शतरंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपम रूप है के आदि देव है के आप पेव है के चतरंग विहीन है के कह दीन है के रोजी दिया कर ही मेरे हा कह के बाक बैब है के गैब लगैब है के आप बोल गुनाह है के शाह अनशाह के कारण ग्रहण है के रोजी रह है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वंकली है के सर्वंगली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र धाने हैं के सर्वत्र गाव ने के सर्वत्र भावने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र बाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंगली मैं के बर्मंग भीम है के अकलोलाम है के साहु कलाम है के उजनो बजू है तमाम ध्रजू है हमेशल सलाम है सलीकत मदाम है गनी मुलस गस्ता है गरीब बरासता है बुलंद मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू उल निदान है हरी फल जी मैं याग जगी नैन एकल तरंग है भेद है पंग है अजी जो निवाज है गनी मुल खराज है निरौत स्वरूप है त्रमौत बभूत है पर भगत प्रभा

रूपेण अधरूपेण अंगीना में दर्पंगित्र कामें सर्वर्गंत्र बाध्य गंजय गाध्य शुभम सर्वभाग्य सुसर्वान रागे द्रभोग स्वरूप जय सुदायक नरक प्रणाशय पृथ्वी प्रवासय निरोकत प्रवाह सदैव सदा विभक्त स्वरूप प्रजोत अनूप है निरोक्त सदा है विभक्त प्रवाह अनौक्त स्वरूप प्रजोत अनूप है जाचरी शंभ अपंग है नंग है पीख लीख है परम कर्म नाद जुगाद है जय है पय भूत है तूत है ना शब्द सतंत बंध है भगत विरक्त नाश है प्रकाश है नचंत सुनंत लेख देख लीख पीख डाय खाय सम है कम है नील नाद है नित सुनत जात जात है चरपट छंद प्रसाद सर्वहंता सर्वंगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांतता प्रसाद नमो नरक नाशे दैवं प्रकाशे रंगं स्वरूपे भंगं विभूते परमासं परमाते सदा सर्वसाथे एकाल स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे दृपंगी दृगामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सदर न मित्र न दाते न माते न जाते न पाते नृसाकं श्रीका मितौमी गाय सदैव प्रवाय जय अजय अजाय भगवती शांतता प्रसाद के जहर झूर है के हाजर हजूर है मेसर सलाम है सुना सल गलाम है के साहब दिमाग है के उसनों चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज करेंद है करीमल कमाल है के उसनों जमाल है गनीमल खराज है ग्रीवल निवाज है हरिफुल सिकन है रासल बिकन है कलंक प्रणास है समातुल निवास है गंजल गनीम है रिजाय करीम है समातुल जवाह है के साहब गिरा है।

आवाज संग रहे आए पूर्ण हो हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ को यवर न त्याऊ जो वर जाओ सुतम दे पाऊ सेवक देख हमारे दारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आपाद मुझे भरे आए मरण काल का द्रास ने भरे आए हू जो सदा हमारे पछा सरिया सदजू करे हो रचा राख ले मुझे रखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्ट के हंता तुमहपुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बब धरा काल पाए शिव जुगव धरा काल पाए कर विष्णु पर गासा।

संतन सुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़ गड़ के बड़ बड़ की जाने जाबुड करख करा कर दार पर जरत तब दे अपार जब करख कर तो कब हूं तुम मैं मिलत दे दर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरे तंद्रालम जानत भेद भेद हर आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नाद सांब दाका मुड़ चारत भेदा जाको भेव ना पावत भेदा

प्रथम संसार एकूप स्वरूपारंग भयोराव कहीं भूपायांड जजे रज सित जकीनी उदभुज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा हवा बैठा कहूं सिमट भयो शंकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग करो।

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सबराता अगले वक्त सकल दे कौ हरता दुष्ट दोखियन को शय करता सरिया तो जा पाए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

आवई। दुख दर्द भव निकट नाथन नरके रहे, हो जो जाकी एक बार जाओ भई को कहे जाओ भई। संभव सत्रह सहस पढ़े जय, अर्ध सहस पुण दीन कहे जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रव भारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सुभिया।

गौरी सुखमनी महला पंजवां श्लोक ओंकार सतगुरु प्रसाद आद गुर इनम है जुगाद गुर इनम है सतगुर इनम है श्री गुरुदेव इनम है अस्तरी सिमरो सिमर सिमर सब पावो कल कले तन माहे मिटाव सिमरो जास सिमर एक

प्रभु का सिमरन दुख जम नसै, प्रभु का सिमरन काल पर हरै, प्रभु का सिमरन दुश्मन तरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु का सिमरन अंधन जागै।

हर सिमरन गीत चौंक उठ जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओसला कारा हर सिमरन में आप निंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तन प

अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बाहर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस तिस आगे रखे सबकी

जय प्रसाद सुख सहजे बसनाम, जय प्रसाद हस्त कर चलै, जय प्रसाद संपूर्ण फलै, जय प्रसाद परम गति पावै, जय प्रसाद सुख सह समावै। ऐसा सब त्याग अवर कतला को, गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, किस प्रभु को।

प्रदीप साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटाय अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझा तब नेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा परने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महेश मान साध का संग अगोचर मिले साध का संग सदा कर फुले साध का संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग होए सब कीरेन साध का संग मनोहर पैन साध के संग न कतहु कार साध संग अचत मन पाव साध के संग माया ते पिन साध संग नानक तब से प्रसन्न साध संग

साध संग पया गया कारी साध संग बच पई हमारी साध के संग मिटाए सब रोग नानक साध पिटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जीता सुने तीता बखिया नहीं साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंची साध की शोभा

ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी

चश्मा परस मन में पीत निरंजन दर्श पर तिरिया रूप न पिख नित्र साध की टहल संगीत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने।

नानक को पुरख कहिया जीवन मुक्त पाद्रम के सगले था जित जित कर रखे तैसा तन नाव आपे करन करावन जो प्रपावे सोई पुन हो।

अमर पै सद सदी जीव कई को नाम गुनगावे आत्म रस जय समावे अपने जन को सा समा।

ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिर साधक मुख ज्ञान कबहू पीठ हस्त तंग हो जिया अनक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो संगी दिखा।

अहंकार, अंक तपस्या करे अंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अंक जतन कर आत्मनिंदर वह हर दर गए कहो कैसे गए, आप कहो जो पला कहा वह किसे पलाई निकट नया, सर्व की रे जा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोई, जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी नी तब लगने चलना ही चीत, जब लग मो मगन संगमा तब लग धर्म राय देश जाए, तब कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहज कटे।

बिना संतोष नहीं कौरा जाए स्वप्न मनोरथ दुख सबका जाए नाम रंग सर्व सुख होए वडपागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा

ओपिन सहसब संग चन चलो मार गोबिंद मिटाए पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म सरवन हर कथा हर दरगाह नानक उजल मथा बड़पागी ते जनजग माए सदा

जिन प्रभ जाता सुशुभावंत सगल संसार उतरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगले उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड़पा गै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किस करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सिवाय होवै सो होय करनै हार पछाणै सो प्रभ कर किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिस्ताना जिते उपजे तिस माहे समा

नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे श्रीमद वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे अगस्ता काल, नाम के तारे शैल आकार, नाम के तारे प्रिय सपवन, नाम के संग उदरा सुन सरवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब मैं समान, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बजाए तिसै सब तली, सत नाम सब का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत के जन जा कर हृदय प्रवेश, सत निरत दूजे दे कोए, नाम जपत ताकी गत होए, आप सत किया सब सत,

एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक का मन प्रतीत, ठाकर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम का रंग, सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक की राखी निकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नान सो सेवक सा सास मार, अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे बधाई, अपने सेवक को नाम जपा, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गत में कोई न लखे, प्रभ के सेवक को कौन भूखे, प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक से सेवक दैद प्रताया, नीति चीरी में कल रखे, पश्चिम करा लस्तर को रखे, जिसका सास न काट दिया, ताको राकत देकर हाथ, मांस जतन करत बोपा, किसके कर्तव्य बिरथे जात, मारे न रखे अवर न कोए, सर्ब जिया का रखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक।

कहो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नान से सेवक गुर की मतले तीस बिस्वाई गुर का मन माने जो सेवक परमेश्वर की गत जान सो संत गुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ धर्म नाम गीता दाता आठ पैर पादाता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कस कर्म सहस्यांत लै न जाइए नाम कैसा गुरबट पागी पाइए सफल दर्शन पेट तो नीत पर सत चरण गत निर्मल रीत पेट ते संग राम गुण गवै पार ब्रह्म की दरगह गवै सुनकर बचन कर अकान मन संतोष आत्म

चरण कमल हृदय सिमरै सत बलहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा सब जपने ये हर रस्ता वै जन कोए अमृत पीवै अमृत सोए उस पुरखा नाही कदे विनाश जां कै मन प्रगटै गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया का संग न ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगाशे नानक परम मोह दुख तहते नासे तप्त मह ठांड वरताई अनंत पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे

सिमरत सासत भेद विचार हर की भगत करो मन लाए मन बंसत नानक फल पाए संग न चाल सते रतना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मी

सामने हर की पग करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माय जन्म जन्म के कलविख जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनते कहते रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाम सह सुबह नान गुन गाओ गुन गावत तेरी पुत्र सुमैल बिरस जाए

ससियर सूरन खतर में एक बानी प्रभ की सबको बोले आप अडोलना कबू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोह न पाइय गुण अमोल सर्व जोत में।

संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुनै सुख बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख मान कर्ण करावन हार प्रभ जन अंतर बसै बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत किस प्रभ ते सग

कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप देखनहार, सगल समग्री

पार ब्रह्म निट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अंत त्यागो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप शोज बिनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के परलिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो न

सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हो प्रदान पुरख प्रगट सब लोय सब ते ऊचे

कि सिख ने वो सेवा कीती है जो गुरु नू प्रसन्न करन वास्ते सी, जे गुरु दे हुक्म दे मुताबक, गुरु दी रजा दे मुताबक, गुरु दी मर्जी दे मुताबक ये सेवा कीती है तो गुरु दी खुशी मिलेगी। जे गुरु दी रजा गुरु दे बचना दे च कोई हुज्जत कढ लई तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। सिख इतिहास की एक कथा बड़ी प्यारी है, डल्ले का नाम सारिया ने सुनिया है। अमीर सी, इलाके का चौधरी सी, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चारों साहबजादे शहीद हो गए, मां गुजरी जी शहीद हो गए, आनंदपुर साहब लुटिया गया, छुट गया, चमकौर की गड़ी का हादसा लोगों की नज़र दे भयंकर हो गुजरिया से, नाल दे 40 सिख शहीद हो गए सी, जिन्हां दे चो दो प्यारे भी सन जो शहीद होए सन, भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब भाई साहब सिंह जी जो बिदर तो सन, ते भाई साहब हिम्मत सिंह जी जो जगन्नाथपुरी तो सन, शहीद हो गए सी। दो वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी भी उत्थे शहीद हो चुके सन। माछीवाड़े दे जंगल तो नबी खां गनी खां जैसे श्रद्धालु मुसलमाना ने सतगुरु जी दे उस पलंग नू चुकिया जो उच्च दा पीर बन के आए सी। कटाणा साहब दे उच्च दे पीर तो सतगुरु जी उत्थे आए, दमदमा साहब आए, चौज कीते, डल्ले कोल गए। डल्ले ने कोई कसर नहीं सी छोड़ी, डल्ले ने रिस्क लिया से, डल्ले ने जान की परवाह नहीं सी कीती, चौधरपणे की परवाह नहीं सी कीती। गरीब नवाज सचा पातशाह नू अपने घर दे च टिका के उसने प्रशादा पानी छकाया, बड़ी सेवा बड़ी सिदक दिखते रूप च सब कुछ कीता। सिख इतिहास का एक वचन बड़ा प्यारा है, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों कहा, डलिया सेवा कीती है तू, असी तैनू इसका इफजाना देना चाहते हैं, अज तक ऐसा नहीं सी होया। ये पहली बार घटना हुई जो सतगुरु सचा पातशाह दसो गुरु साहबाना दे चो किसी ने कहा होवे तैनू सेवा का इफजाना देना है, मंग की चाहिदा है। डल्ले नू कहा, बड़ी अद्भुत यूनीक ते बेजोड़ ये गल है ते बड़ी संदेशा देन वाली है। डल्या तैनू इफजाना देने है, चल की चाहिदा। डल्ले ने कहता, महाराज अपने कोल बैठन वास्ते पीढ़ी जितनी जगह दे दो। मैं समझदा किसे सिदक दा, किसे भरोसे दा, किसे प्रेम दा दिखदा कोई घाटा नहीं से। कपूरे नू जदों सतगुरु सचा पातशाह जेड़ा कपूरा गुरुआं दा वरसाया होया सी उसनू कलगीधर पातशाह ने कहा सी, कपूरा अपनी ये हवेली दे दे। कपूरे ने बड़ा वड्डा ताना मार दिता सी, की लैण आए हो हवेली लैके, की करोगे, ये छोटी जी हवेली, आनंदपुर तो वड्डा किला सी, जदों उत्थे नहीं रह सके, चमकौर दे इस छोटी जी गड़ी दे च नहीं रह सके, बच्चे मरवा आए हो, सिख मरवा आए हो, तुसी सिखां दी श्रद्धा नू रहण ही नहीं दिता। एक कपूरे दी अल्फाज सन, अपने बच्चे मरवा आए, हुण कहंदे हो मैनू जगह दे दे, कोई जगह नहीं है। तुसी उस आदमी दी मानसिक हालत वेखो जिसने कलगीधर पातशाह नू एडा वड्डा ताना मारिया सी।

छोटी उम्रे पिता नू कुर्बानी की प्रेरणा देण वाले चोजी प्रीतम दोवें लालां दियां जोड़ियां अते बिरद माता गुजरी जी पाप की अपना सर्वस लुटा के मच्छी वाले दे जंगलां विच बेफिक्री दी नींद सुते हुए सन।

किधरे ओ नीला कोड़ा ते किधरे बाज गया है, किला आनंदपुर वाला ते किधरे ताज गया है। लालां दियां जोड़ियां बार के दशमेश पिता जंगलां विच कंडियां परी राह उते टुरे जा रहे सन। पैरां विच बेशुमार कंडे चुभे हुए सन ते खून वग रहा सी, पर कंडे दी चुभन उसनू की दर्द पहुंचा सकेगी, जिस दे जिगर विच सारे जहान दा दर्द टीस बनके पहला ही चुभ रहा होगे।

गुरु दर्शन पाठशा दर्शन प्रेम जीते राम हुए उस राम विच ते इस राम विच अंतर की सिर्फ सानू गुमराह करता चलता। मैं केवल स्पष्ट श्री गुरु साहिब तो दर्शन

सबै अंत हुए जिते राम हुए सबै अंत हुए जिते कृष्ण हुए सबै अंत जैसे एक पास ये आ रहे श्री गुरु ग्रंथ साहब भी यो गल आ रहे जिस गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का एहसान जाने अनजाने इन्हों मनना पैदा है उसे गुरु तेग बहादुर साहब की रचना है फैसला है।

और हम तो उसने चिंता दिया जान वाले ने चिंतित कर दिया। जिस राम की गल करते हैं रब जी भगवान आखते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब उनके बारे कहते हैं

orang hole. Jinu mata dua anak. Jinu mata dua. Jinu mata akal pun kah, na wajar dani. Awe nanda awe. Sangat sama awe. Akhir jangka tan hai tu hole. Eh tu kahani bakri. Ram gayo. Ram gayo. ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ उस राम का जिक्र भी है राजा राम का जिक्र है हाँ जी होम की कहानी की मान पर भगवान के रूप में अकाल पुरख के रूप में गुरु ने उन्होंने दस अवतारा मिचों एक अवतारी बने अवतार जिन्हें ने वो भगवान नहीं होंगे श्री गुरु ने सब नहीं फैसला है अवतार जी ने सारे प्रभु प्राप्त भी नहीं कर सके उन्होंने जान भी नहीं सके फैसला भी श्री गुरु साहब का

कहने लगे ब्रह्मा ने वेद रूपी महान वाणी का प्रकाश किया मने जल्द पर ऐनी महान वाणी का प्रकाश करने वाले भी अपनी हालत की माया मोह पसारा अपनी भी बच्ची तो रीत पे अपनी ही बच्ची से रीत पे पिछा पीता बच्ची अपनी इज्जत मान सम्मान बचाने लगी ब्रह्मा भी अपनी ही बच्ची बिचारी छोप रही सी कभी इधर कभी उधर जिधर जाती थी उधर ही शक्ति ना अपना मुंह ला लेंदा थी ताकि ये मेरी आंखें तो ओले ना पहन ये शक्ति इसे ले ते जदों ओ छुपने वाली आकाश वाल कितना भी शक्ति मुताबिक आकाश वाल गई ऊपर सिर ला लिया महेश नूं ते गल चंगी ना लगी के एडा महान देवता ऐसे कर्म करता है कहंदे ने उन्हें ऊपर ला सिर कट दिता त्रिशूल नाल पर केड़ी अजीब घटना सी इस ऐनी अवज्ञा तों तां रोकिया गया पर क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई इसलिए वो सिर आते हाथ से जुड़ गया किसी दोषी को सजा देना भी एक गुनाह किसी को गुनाह तो कर्म तो बचाना भी एक गुनाह है क्योंकि वो ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म हत्या लग गई जितना मर्जी कोई गुनाह ब्राह्मण कर ले उन्हें कोई सजा नहीं हो सकती ब्रह्म हत्या का दोष लगा शीश आते हाथ से जुड़ गया बिचारा महादेव थां थां टिकाणिया से फिरदा रहा किसी तरह मेरे हाथ नूं इस सिर उठे आखिर एक थां से जाके उठाया कि सिक्रिया नाल उस थां का नाम अज तक कपाल मुंजन तीर कपाल कपाल का मैंने सिर मैं केवल एग्जाम्पल जी मुझे सब मिले गुरु कहते हैं

साहब से महान ज्ञान वाले मन्ने जाते, पर इन्ने ज्ञानवान होने के बावजूद अपने घर में इन्नी तामश गुस्सा कि दरवाजे पे अपना ही पुत्र खलोता है, वो तो केवल इसलिए रोक रहा है कि मैं स्नान कर रही हूं। एक ज्ञानवान महान पुरुषों ने संसार की होर कल त्रैदर्शी होना तक कि तेरे अपने पुत्र नु नहीं पछाण सके। सिर अपनी मूंद माल विच परो लिया, उथों निकल नहीं सी सकता, मां रोई कि मेरा पुत्र लियाके हाथी के बच्चे का सिर लहा दिता जिन्हू कने सकता। यह तामस जिहड़ा अपने बच्चे की भी पछाण नहीं करता। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने जिक्र किया, कह सकते

कहने लगे तो पलिया राजा राम होए पर पदवान नहीं। गुरु कहते ने मैं सिख नू पदवान नाल अकाल पुरख नाल जोड़ना चाहता, इसलिए मैं किसी देवी देवते नू दरम्यान विच नहीं आने देना चाहता। सिख नू एक अकाल पुरख नाल जोड़ना चाहता, जागत जोत जपै नित मास्टर एक बिना मन नैत ना आने। पूर्ण प्रेम प्रतीक सजे व्रत गोर मड़ी मठ भूल न माने, तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना न एक पछाने, पूर्ण जोत जगे घट में तब खालसा तहे न खालिस जाने। गुरु कहते मैं इस अकाल पुरख नाल जोड़ना चाहना, फर्क है। हैरान होया बाबा नामदेव जी के शब्द ही श्री गुरु साहब जी साढ़े तरह कभी बाबा नामदेव से भी विश्वास कर रहे ब्राह्मण दिया इन्हें गल्ला से कि राम जिहड़ा राजा है ओही भगवान है। बाबा नामदेव भी मनन लगता है उन्होंने श्री गुरु साहब दोनों शब्द मैं मुंह सामने रखना चाहिए। इस शब्द में बाबा नामदेव आप ही अपनी रचना तो आखते हैं

अर्ज करा, फिर दोहरा दिया कि कुछ भी मैं अपनी जबानों नहीं आखिया, कोई फैसला मैं आप खुद नहीं दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दसम ग्रंथ विचों ही सारिया विचार आप जी नाल सांझियां कीतियां ने, ते उन्हां वीरां नाल सांझियां कीतियां ने जेड़े अज किसी कारण वश बेशक उपरों सही आखदे ने असीं भी श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनने आ। ओ भले जे मनदे आओ ते आओ, पहला ये गल छड़ दे, भला छड़ सकदे हो राम राजा दी पूजा? साढ़े नाल ते संबंधित नहीं। तुहानू मुबारक होवे, मैं तुहाडे ते क्रिटिसाइज नहीं, तुहानू हक है, तुसीं अपने धर्म विश्वास विच जियो, तुहानू हक है, मेरा कोई अधिकार नहीं मैं उहदे कोई मुदाखलत करा। तुहानू पूर्ण हक ने अपनी किस्म नाल जीवन दे, अपने धर्म विश्वास विच जीवन दे, पर मैं तां सुखी नूं मुखातब करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा मैसेज देना चाहना, इन्हां लई की हुक्म है। इसलिए इस स्पष्ट करना चाहना कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिस राम का जिक्र करदे ने, वह राम राजा राम नहीं, वह राम अकाल पुरख है। और स्पष्ट कर दिता है कि राम गयो रावण गयो, एक पासे ओ राम है जिते राम हुए सब अंत मुए, एक पासे ओ राम है, एक पासे ओ राम है जिंदी पूजा है कि ओ अविनाशी राया, निर्भव संग तुम्हारे बसते ये धर्म कहां से आया। वो अविनाशी है, कभी मरदा नहीं, कभी खत्म नहीं हुंदा, उनके घर कभी सोग नहीं हुंदा, वो बिनसदा नहीं, उनू आना जाना नहीं पैंदा। बस दोहां रामां विच आ अंतर है, असी किस राम दे उपाशक हां, असी किस राम दे पुजारी हां, यह फैसला सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने दे दिता है, ते हर सिख ते लागू हुंदा है। इन्हां शब्दां नाल सिमां दा गाचे खां, फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।